था सो पर कर एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावह सब त्यावह तुजी हर सच्चे सिरजन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक भिखारी जी सब तेरी चोज वडाणा।

पहला तित सर्वर पहलिन वसा पानी पावक तनह किया पंक जो मोह पग नहीं चालाए हम देखा तह डूबी रे मन एक न तित सबूण मनाओ हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणवत नानक तिन की सरणाओ जिंतु नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भाव जल तरण कै जन बृथा जात रंग माया कह रहाओ जप तप सन

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहै हमारा अपना जन करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ जय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे अबरिया, मरण काल का त्रास न मरिया। ओ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज ज्यो करे हो रच्छा। राख ले हो मह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुमह पुरी चातुर दस घंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैतो जचन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकर को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मोहबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानते। चीटी ते कुंचर असूला, सपर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाना, कट कट के पट पट की जाने। जावद कर करा करतारा, प्रजा तर तब दे पारा। जबिया कर कर तुह कब हूं, तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं। जिते बदन श्रेष्ठ सब तहरै, आप अपनी बूझो चारै। तुम सब ही ते रहत नदान, मो जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीला नाद संभ। तांका मूड उचारद भेदा, जाको भिम न पावद बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेवो, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध जीती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिन सजाओ प्रथम संसारा।

दोहरा नेत्र तुम के चरण तर स्तद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बास बाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को अंक तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब भेद कह हम एक न जाने ओ

जिसका सब साधारो। जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उधारो। ए वस्तु तजी न जाई नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म।

बंधन काट करी मन निर्मल पूर्ण पुरख बढ़ाता रहाओ। नानक तो प्रभ अवनासी ताकि से मृति जासी अंध करे तेरी दासा। जा पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा। ताती भावन लगई पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कर दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बंत बनाई राम नाम औखा दिया एका लिव लाई। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याज मिटाई।

सहस्रमूर्त ननायक तो ही सहस्पद विमल मन उत्पद गंध सहस्तव गंध चौथ मोही सब में ज्योत ज्योत है सोए चानन सब में चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए

अतीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिपर्क हैं, सर्ग हैं, अनिल हैं, नाद हैं, जे हैं, जाद हैं, जन्म हैं, वर्ण हैं, भूत हैं, पर्ण हैं, गंज हैं, पंज हैं, तूज हैं, चंज हैं, मीक हैं, रफीक हैं, तंद हैं, बंध हैं, निर्भूज हैं, सूज हैं, अकाल हैं, जाल हैं, लाह हैं, जाह हैं, नंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरे श्रीक हैं, निरे लंब हैं, संभ हैं, गम हैं, जम हैं, पूत हैं, शूत हैं, अलोक हैं, शोक हैं, कर्म हैं, परम हैं, जीत हैं, पीत हैं, बाह हैं, गाह हैं, मान हैं, निदान हैं, नेक हैं, फिर एक हैं, पुजंग, प्रयात, छंद, नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी।

देवे सोत्र मेन मो रोग हरतार मो राग रूपे नमो साह साह नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो प्राजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं पोजंग प्रयात छंद अगाते अबाते आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्तवं निर्नाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं पंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृष्यंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी।

नानक से पवित्रता जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहजना उपजै विण सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कित संजमा रहे कर्म कमाए सह सह जीव मलीन है कर सं तोता जाए मन धोब हो शब्द लग हो हर स्यो रह हो चित लाए कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजाए सहसा बजाए जियहु मैले बाहर हो निर्मल बाहर हो निर्मल जियहु ता मैले तिनी जन्म जुआ हारिया एह तिस ना वड्डा रोग लगा मरण मन हो विसारिया वेदा मह ना मुत सो सुन है नाही रह जो बेतर लिया कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया जियहु निर्मल बाहर हो निर्मल बाहर हो ता निर्मल जियहु निर्मला सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचा नाही मनसा सच सुमाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जा रे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जी अहो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदा त्याए अंतरात्मा सुमाले आप छड सदा रह परना गुर बिन वरना जाना कोई कह नानक सुन हो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर था कोई पुछो विवेकिया जाए अनेक जूनी परमे आवै बिन सतगुर मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कह नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गाव हो सच्ची बाणी बाणी ता गाव हो गुरु केरी बाणी आ सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीव हो अमरे तो सदा रह हो हर रंग जपे हो सारे गपाणी कह नानक सदा गाव हो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बज होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिरलाया माया बोलन पे रवाणी कह नानक सतगुरु बज होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिस नौ दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ शिव सकत आप उपाए करता आपे हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्ता शब्द मन वसाए गुरमुख जिस नौ आप करे सो होवै कस स्यो लिव लाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरे तो शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्ता सार न जानी तत्ता सार न जानी गुरु बज हो तत्ता सार न जानी तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोल है अमृत बाणी कह नानक सो तत् पाए जिसन वंदन हर लिव लागै जाग रहन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यो मन हो विसारी है मन हो क्यो विसारी है विडदाता जे अगन मह आहार पहुँचावे ओस नौ केहो पोहे न सकी जिस नौ अपनी डिवलावे अपनी डिव्या पिलाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यो मन हो विसारी है जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब एको जेही करता है खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परिवार फला पाया लिप छुटकी लगी त्रिसना माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरा मोह उपजै पाहु दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनि विचे माया पाया हर आप मुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिला तिस नौ सिर सौपी है विच हो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहा हर वसा मन आए
ਹਰ ਆਪ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਗਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਾਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਹੋ ਜੀ ਅਹੋ ਲਾਹਕ ਪਿਹੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਵਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੁਕਿਤਾ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੈ ਨ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੈ ਪੀਐ, ਹਰ ਰਸ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾ ਨਿਰਾਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਈ ਜਗਤ ਦੇਖਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ, ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿਓ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਆ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ, ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ, ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਵਰਨਾ ਕੋਈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸੱਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣ ਹੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ

मुसलमाना सिफत शरीर पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पौच बंदी वेखन को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूपे अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुनते हवन जे तेरा खनाम

नानक जनते उपाय कह समाले सबना जन करता है करना किया चिंता भे करनीता सो करता चिंता करे जन उपाय जग तिस जवारी स्वस्थ तिस

पड़ गड्डी लदी है पड़ भरी है साथ पड़ बेड़ी पाई है पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर।

अंत महिमा ताकी के तकबरना बल बल जाइया ताके चरना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाहियां राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दो तांगा बहो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दियां एह वड्याइया कह नानक सुन हो संत हो शबद धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शबद तित कर सुभागा कर सुभागा शबद वाजे कला जित करत हरी पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुन हो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाण संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जा।

भगवान। सकल सुमगरी तुमरा सूतरता मते हो सो आज्ञा तुमरी गात मेत तुम ही जा

अंतरंग अनेक ना जापन करते बार जिया अदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर आनंद बथाई तुद कर्ज माण महत्ता तीज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसे दरकता